0: But we will surely cause those who disbelieve to taste a severe punishment, and we will surely recompense them for the worst of what they had been doing.
1: ذلك جزاء
2: exciting hota hai kyunki wo naya hota hai.
3: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
4: Dosti ki koi value nahi hai na tujhe. Itne acche dost bhi nahi hai.
3: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2, now in cinemas.
5: Dulhan ke liye makeup.
3: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
7: साउथ हॉल ट्रेवल Battle protected.
8: بسم الله الرحمن
0: الرحيم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.
8: Yeah.

0: तारिक हलाल ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए ऑन tarikhalal.com और घर बैठे ताजा मीठा हासिल कीजिए।
1: This is Laika Radio.

साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410. Saho Travel, auto protected.

0: ब्रेकफास्ट विद डीप राजा।
1: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
2: यू मीन सफल ट्रेवल?
1: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
2: एक बार आजमाइए जरूर साउथ हॉल ट्रेवल।
1: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
2: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
3: कॉल साउथ हॉल ट्रेवल 24 hours a day, 7 days a week ऑन 0161 250 1250। दैट्स 0161 250 1250।
4: वेलकम टू द जंगल।
5: फिल्म बिल्कुल फेक,
4: हमारी फिल्म आर्मी वाली,
6: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
5: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
4: स्टार कास्ट है
5: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
7: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
5: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून।
8: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं।
9: मैं किस लिए फिल्म में?
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
12: Don't miss Mono's Markets, Europe's largest arena. Co-op live on Saturday the 1st of August. 200 brands, 10 shopping zones, a mega main stage, industry experts,

0: Breakfast with Deep Raja.
1: अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा.
0: महाराजा टूर्स ला रहे हैं कैप्टिवेटिंग चाइना 2026, शंघाई, बीजिंग, शान और चेंगडू का अनफॉरगेटेबल सफर. ग्रेट वॉल, टेराकोटा वॉरियर्स, हाई स्पीड ट्रेन्स और एडोरेबल पैंडास, फ्लाइट्स, होटल्स, इंडियन खाना और गाइडेड टूर्स सब इंक्लूडेड. फ्रॉम £3,299 पर पर्सन. विजिट maharajatours.co.uk या कॉल 07956154846.
2: वेलकम टू द जंगल.
3: फिल्म बिल्कुल फेक.
2: हमारी फिल्म आर्मी वाली
4: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
3: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
2: स्टार कास्ट है
3: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल एंड यू. स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
5: अन्ना अभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
3: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून.
6: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
7: किस लिए फिल्म में.
8: जी टीवी एच डी पर देखिए नई कहानी तू ही रे दिल में.
9: स्वाति जब से लाइफ में आई है लाइफ ना कंप्लीट सी लगती है.
10: इतना ही प्यार हमेशा रहेगा ना संजय.
11: मगर नियति को क्या कुछ और ही है मंजूर.
12: वृंदा तेरे सपनों का राजकुमार अब सच में तेरा होने जा रहा है.
13: तीन मासूम जिंदगियां किस्मत के जाल में.
8: तू ही रे दिल में रोज शाम 5 बजे जी टीवी एच डी पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप.
14: Lotto from the National Lottery now gives you 2 chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. 1 ticket, 2 chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
15: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
16: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
15: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
17: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
8: ZTV HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
18: जगदात्री,
8: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है.
18: माला ले आना. लाइया जी.
8: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है.
19: टीम गेट रेडी फॉर द एक्शन.
8: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री. देखिए रोज रात 8:30 बजे ZTV HD और Z5 पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394.
0: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क. डाउनलोड द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ऑन योर मोबाइल डिवाइसेस. द रेडियो नेटवर्क कंसिस्ट्स ऑफ लाइका रेडियो ग्रेटर लंदन, Leica Radio Greater Manchester and Leica Gold Radio. Did you know you can get all the biggest showbiz news stories daily by logging on to LeicaRadio.com or the Leica Radio mobile app powered by BizAsiaLive.com.
20: This is Leica Radio.
21: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply... for quick reply, affects your concentration and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
22: You're both on the same road. Same tarmac, same rules. Just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way. They're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes. Because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
0: Breakfast with Currency D-Raja. Updates are sponsored by LemFi Mobile App. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: And a pound in your pocket today can get you 124.88 Indian rupees, 368.21 Pakistani rupees and 1.32 US dollars.
20: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LIKA Radio.
1: And the gold rate today is starting at 101.09.
0: Gold rate is...

0: लता जी की आवाज में आप सभी का फेवरेट गाना फिल्म बाजार से लिया था, जिसमें खयाम साहब का म्यूजिक था। उससे पहले सभी का फेवरेट गाना, सभी की फेवरेट आवाज जो है मोहम्मद रफी साहब की आवाज, और फिल्म का नाम लोफर जो 1973 में आई थी। और लीजिए दो आपके फेवरेट गीतों के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। ये है आप सभी का मनपसंद लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर लाइका गोल्ड आप सुन रहे हैं ग्रेटर लंदन में, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स, और मुझे कहते हैं ऋतु शर्मा। अब से लेकर दोपहर के 1 बजे तक आपके साथ रहूंगी और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल मजे में होंगे और पूरा हफ्ता खूब मजे के साथ बिताया होगा, और आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा बीते, ऐसी ही मेरी उम्मीद है। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और आज भी प्रोग्राम में वो सब कुछ होगा जो हमेशा होता है, और क्या होगा वो मैं बताती रहूंगी, लेकिन आज एक कंपटीशन भी होगा। जी हाँ, एक कंपटीशन भी होगा, और आपको कुछ जीतने का मौका भी मिलेगा, और वो क्या है वो भी बताऊंगी, थोड़ा सब्र करो। लेकिन पहले
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 124.05 भारतीय रुपए। लेकिन याद रखिए, हमेशा की तरह ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। और इसके अलावा आपको याद दिला दें कि जून के पहले पहले अगर आप कुछ जीतना चाहते हैं तो आप जीत सकते हैं £75 का वाउचर, जब आप एवरीडे जीत सकते हैं, जब आप ट्रांसफर करते हैं £1,000 से ज्यादा, या फिर 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर £2,000। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Yeah.
1: Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: तो आज जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें मैच होने जा रहा है, पहले तो नेदरलैंड्स और स्वीडन का जो ग्रुप एफ में आते हैं, और उसके बाद ग्रुप ई का मैच होगा जर्मनी और आइवरी कोस्ट के बीच में। और आपको बता दें कि ये स्पॉन्सर किए हैं रैकलो ने, और अगर आप रैकलो से कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं तो 15 मिनट की फ्री लीगल एडवाइस आपको मिल सकती है जब आप मेंशन करते हैं लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. This is Leica Radio.
3: Sad

0: यस जसविंदर नरूला और सोनू निगम की आवाजों में था ये गाना फिल्म सोल्जर से, जिसने बॉबी देओल की जो लव बॉय वाली इमेज थी उसको खत्म करके एक एक्शन स्टार की इमेज बना दी थी इस फिल्म सोल्जर में। और उनके साथ थी प्रिटी जिंटा। फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी और इसके गाने काफी पसंद किए गए थे, जिसमें म्यूजिक था अनु मलिक का और साथ में थे सुरेंद्र सोढ़ी, और सुरेंद्र सोढ़ी जिन्होंने म्यूजिक कंपोज किया था।
1: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
2: This is Laika Radio.
0: तो आप आपका मनपसंद रेडियो स्टेशन सुन रहे हैं। एक बार फिर से बता दूं कि ये है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स, जहां पर ऋतु शर्मा है आपके साथ अब से लेकर दोपहर के एक बजे तक। और आपके ढेरों मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं, तो चलिए क्या करें, डाल ली जाए एक नजर उन पर।
1: लाइका रेडियो,
0: जी हाँ बिल्कुल, इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आपको बताते चलें कि आज जो मैसेज हमें सबसे पहले भिजवाया है हमारे रेगुलर लिसनर विजय गुडोरी जी ने, और आज भी आपने बड़ी ही अच्छी सी आज का विचार हमारे साथ शेयर किया है। कहते हैं, भरोसा उन पर करो जो तुम्हारी तीन बातें जान सके, हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और आपके चुप रहने की वजह। बहुत सुंदर थॉट, थैंक यू। और चलिए इसी खूबसूरत थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं। मनीषा शाह आप हमारे साथ हैं, शेखर जी कहते हैं, मुझे शेखर आनंद कहते हैं और मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, क्या बात है, थैंक यू साथ देने के लिए। थैंक यू मिस्टर शेख। नरेंद्र बागिया जी आपने भी कुछ कहा है, और आपने कहा है कि कहते हैं, क्या कहते हैं, कि यादों का शहर ना, यादों के शहर, यादों के सहारे ऋतु, यादों के सहारे दुनिया नहीं चलती, बिना किसी शायर के महफिल नहीं बनती, एक बार पुकारो तो सही दोस्तों, क्योंकि दोस्तों के बिना ये धड़कन नहीं चलती। क्या बात है नरेंद्र जी, स्वागत है आपका भी इस शो में। रिक स्टार रिकिन आज हमारे साथ जुड़े हैं। रिकिन जी कहाँ थे, इतने दिनों बाद आपका मैसेज आया है, थैंक यू साथ देने के लिए। थैंक यू भारत गंगाराम जी, थैंक यू मालती जी कहती है, मुझे हमेशा ही आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, और मुझे भी अच्छा लगता है जब आप ये कहती हैं, स्वागत है। थैंक यू अर्जुन जी, प्रीति बेल्जियम से हमारे साथ हैं, पुनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। और शुरू के दो गाने सुनकर आपको आपकी मम की याद आ गई, तो होता है कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारी कुछ यादें जुड़ी रहती हैं। आप हमारा साथ दे रही हैं, थैंक यू भाइयों। मोहम्मद अयुब चौहान जी, थैंक यू फारूक मोहम्मद जी, कैंट से सलमा जी, मुकेश पटेल जी कहते हैं, मौसम आज बहुत शानदार है, बेईमान तो नहीं है। अब देखिए कुछ लोगों को ये शानदार मौसम ही थोड़ा बेईमान लगता है। लेकिन गाना बहुत सुंदर था, आपने एंजॉय किया, सो थैंक यू। थैंक यू महेंद्र बजारिया जी, प्रज्ञा जी कहती हैं, आपका इंतजार है, थैंक यू। वियाना सुन से अनिल सोनी जी सुन रहे हैं, निर्मला हमारे साथ हैं, हंसा वोरा, जासू जी, संध्या वासर, तोची जी, संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी आपने भी लिखा है कि वर्ल्ड कप के जुनून में एक छोटा सा विचार मेरे दिमाग में आ रहा है, और इसे लिखा है कि मेहनत करो और अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहो। बिल्कुल सही कहा है, वैसे ये फुटबॉल के खिलाड़ी डेढ़ घंटे तक ही ना कितना दौड़ते रहते हैं, और एक गोल मिलता है तो वाकई में खुशी होती है, और आजकल मैचेस चल रहे हैं, मजा आ रहा है देखने में। महेंद्र पटेल जी थैंक यू, योगेंद्र जैन जी, सुमन बद्रेसा, ज्योति जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपने इतनी मेहनत करके मुझे इतने प्यारे मैसेजेस भिजवाए, तो ये अगला गीत बिल्कुल आपके लिए बनता है मेरी ओर से आप सबके लिए।
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: लीजिए मुकेशी की आवाज में ये गाना मेरी ओर से आप सभी के नाम पर जाता है और जिन सभी का भी ये फेवरेट गाना है। सहर जी हमारे विजय गुनोवा जी बैटरसी में सुन रहे हैं, हमारे गिरीश जी भारत में सुन रहे हैं, कहते हैं सैटरडे का तो बेसब्री से मुझे इंतजार रहता है, क्या बात है, थैंक यू सो मच। इसके अलावा विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद, फरीदा गुलाम अली जी थैंक यू, दिनेश पोपट जी बहुत धन्यवाद। और आपको याद दिला दें कि ऐसे ही बहुत सारे गाने आज आपको सुनवाने वाली हूँ प्रोग्राम के अगले हिस्से में, जिसे हम कहते हैं यादें। और उसका कारण ये है कि आज की यादें में हम शम्मी कपूर को याद करने वाले हैं। शम्मी कपूर के बहुत सारे फैंस हैं हमारे यहाँ, तो आप सब तैयार रहिए प्रोग्राम के अगले हिस्से में उनके बारे में, उनसे जुड़ी कुछ कहानी किससे सुनाऊंगी और उनकी फिल्मों के गाने भी सुनाऊंगी।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
0: लेकिन ये भी याद दिला दे कि प्रोग्राम के अगले हिस्से में कंपटीशन भी होने जा रहा है और ये कंपटीशन क्या है ध्यान से सुनिए। लाइका रेडियो नेटवर्क जेस एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर आपको मौका देने जा रहे हैं जीतने का दो टिकट्स गुजराती स्टेज कॉमेडी शो के, जिसका नाम है सखना रेजो हस्बैंड जी। ये है नाटक का स्टेज का जो कॉमेडी स्टेज शो का नाम, और इसमें लीना शाह और समीर शाह ने काम किया है। ये फ्राइडे 26 जून को होगा 27 पाटीदार समाज वेम्बली लंदन में, और आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये टिकट सिर्फ लंदन शो के लिए है, क्योंकि ये शो और भी कहीं हो रहे हैं लेकिन आपको हम सिर्फ लंदन शो वाले टिकट देंगे। इसलिए प्रोग्राम का अगला हिस्सा ध्यान से सुनते रहिए।
2: Like our radio.
3: Like a radio.
2: Feel good tracks all weekend with Ritu Sharma on Like a Radio Greater Manchester.
4: Brought to you by Southall Travel.
0: और अगर हॉलीडे जाने का प्लान कर रहे हैं तो साउथ हॉल ट्रेवल से बेटर और क्या, विजिट कीजिए साउथ हॉल ट्रेवल और उन्हें फोन कीजिए 0208-574-8410 पर, और उनके साथ न सिर्फ टिकट्स बल्कि पूरी डील इंक्लूडिंग फ्लाइट्स होटल सब कुछ बुक करा सकते हैं। एट ऑल प्रोटेक्टेड है, 40 साल से आपका साथ दे रहे हैं और ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड भी जीत चुके हैं, तो याद रखिये साउथ हॉल ट्रेवल।
4: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for Manchester at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma.
5: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल
6: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
7: यू मीन साउथॉल ट्रेवल?
6: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
7: एक बार आजमाइए जरूर साउथॉल ट्रेवल।
6: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
7: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
8: कॉल साउथॉल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161-250-1250. दैट्स 0161-250-1250.
9: Surinderella is back for 2026. Beck Theatre Hayes, 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre World Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surinderella is guaranteed dizzy panto fun for all the family. And with tickets starting from £15, click riftgotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surinderella goes back into the Bollywoods.
10: Radio partner, Leica Radio.
11: Don't miss Mono's Markets, Europe's largest arena. Co-op live on Saturday, the 1st of August. 200 brands, 10 shopping zones, a mega main stage, industry experts, speakers, Nasheed artists, and charity partner Human Appeal. Early bird tickets sold out in just 3 days. First release only £15 and almost gone. Leica listeners get 10% off tickets and stalls with code Leica10. WhatsApp 07482511603. Visit monosmarkets.com/tickets now.
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
12: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
13: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
12: High appreciation.
13: In Dubai.
14: Herald. New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
15: Need a car the halal way? Look no further. Halal Car Finance is now available in the UK with Ayan. No interest, no hidden fees, no compromise. Apply today at ayan.co.uk. Ayan, drive with Baraka. Subject to status checks. Representative APR 10.9%. This rate reflects Ayan's rental charges. We do not charge interest.
16: Caratino Better Ghee. The healthier, low price, cholesterol free, butter ghee alternative. Caratino Better Ghee. Available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
4: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
17: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
18: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
4: This is Leica Radio, Greater Manchester. Send us your feedback on our programmes and presenters by simply emailing info@leicaradio.com. That's info@leicaradio.com. We would love to hear from you to make Leica Radio, Greater Manchester a better station for you. Leica Radio, Greater Manchester is the new name for Asian Sound Radio, giving the northwest of England a refreshing Asian sound. Don't forget, info@leicaradio.com.
19: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
4: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0161 250 8222 or sales@leicamedia.co.uk.
20: Hello there. My name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.

0: यस, वन ऑफ माय फेवरेट्स, यही कहना है मालती जी का, यही कहना है मेरा, यही कहना है संध्या भावसर का, यही कहना है हमारे बहुत सारे साथियों का जिनमें शामिल है नाम गोविंद जांगरा जी, आपका स्वागत है। योगेंद्र जैन कहते हैं इस गाने पर, इसकी धुन पर बहुत अच्छा भजन भी है, सुना पड़ेगा, मैंने नहीं सुना। सत्यनारायण सैनी भारत से है और कहते हैं बहुत मजा आ रहा है आपके साथ शो में, थैंक यू संध्या भावसर, ये गाना आपको डेडिकेट करते हैं। थैंक यू फारूक मोहम्मद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी साथी साथ दे रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे गाने प्रोग्राम में बजाती रहूंगी और याद दिला दूं कि आज की यादें में हम याद करने वाले हैं शम्मी कपूर को प्रोग्राम के अगले हिस्से में, और हाँ अगले हिस्से में कॉम्पिटिशन भी होगा, तो साथ जरूर दीजिए।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 124 भारतीय रुपए, 368 पाकिस्तानी रुपए एंड 162 बांग्लादेशी टकास।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LIKA Radio.
0: So gold rate is 101.05 pounds per gram.
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com. Leica Radio.
2: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented, and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa, or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
6: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamari Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
5: Exclusive radio partner, like our radio.
7: वेलकम टू द जंगल।
8: फिल्म बिल्कुल फेक,
7: हमारी फिल्म आर्मी वाली,
9: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
8: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
7: स्टार कास्ट है
8: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
7: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
8: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून।
7: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
10: किस लिए फिल्म में।
11: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल, at all protected.
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
12: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
12: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
12: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCNPRA.
13: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
14: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
13: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
1: This is Leica Radio, Greater Manchester. Broadcasting on 1377 AM and 963 AM. You can also catch us on DAB Digital Radio across Greater Manchester and East Lancashire. We're also available on Alexa. Simply tell Alexa to play Leica Radio Manchester or download the Leica Radio mobile app.
15: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it. You just dial 999. Use the FAST test. F, face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A, arms. Can they raise both arms and keep them there? S, speech. Is their speech slurred? T, time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast, make the call, dial 999.
1: This is the Leica

बप्पी लहरी के म्यूजिक पर लता जी और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में चलते चलते फिल्म से था ये गाना। और बस ये गाना लेकर चलेगा न्यूज तक। मिलेंगे आपसे न्यूज के उस पार और सुनवाएंगे यादें, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं शम्मी कपूर साहब की। और आप सबके मैसेजेस बता रहे हैं कि शम्मी कपूर आप सभी को कितने पसंद है। तो चलिए मिलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में शम्मी कपूर की यादें के साथ।

0: शम्मी कपूर के गाने एक से बढ़कर एक हैं जिन्हें आज आप इस प्रोग्राम में सुनेंगे। कुछ गाने मैंने चूज किए हैं और बड़ा डिफिकल्ट था कि कौन से गाने छोड़ दूं और कौन से गाने बजा दूं, लेकिन देखते हैं आज कौन से गीत आप की पसंद के इस प्रोग्राम में बज पाते हैं। लेकिन आज हम शम्मी कपूर साहब को याद कर रहे हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि कभी उन्हें जानवर कहा गया, कभी उन्हें जंगली कहा गया, लेकिन जब लोगों ने उनका काम देखा तो उनके दिल से एक ही आवाज निकली, शम्मी तुम सा नहीं देखा। और देखिए इसीलिए तो आज के जमाने में भी शम्मी कपूर साहब के इतने सारे फैंस हैं। ये मुझे आपके मैसेजेस बता रहे हैं और आपको लग रहा है कि आज की यादें इस सैटरडे की बेस्ट यादें होंगी हमारे विजय जी का कहना है। तो चलिए उनसे जुड़े किस्सों की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि हिंदी सिनेमा के एल्विस प्रेस्ली कहे जाते हैं शम्मी कपूर साहब, और उस जमाने के बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक एक अलग ही डांसिंग स्टार थे, और ये अंदाज लोगों को उनका तब भी पसंद था और आज भी पसंद है। वैसे तो उनका जन्मदिन अक्टूबर में आता है और हम सब जानते हैं कि पृथ्वीराज कपूर के बेटे हैं, राज कपूर के छोटे भाई हैं, और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1953 में की थी जो इनकी फिल्म थी जीवन ज्योति। लेकिन शुरुआत की 15 फिल्में जिस लगभग 15-16 फिल्में थी या 10-12 फिल्में थी, जिस जितनी भी फिल्मों में इन्होंने काम किया, फिल्में चली नहीं, सफल नहीं रही। और फिर इनकी फिल्म आई 1957 में तुम सा नहीं देखा, 2 साल बाद दिल दे के देखो। और इन दोनों फिल्मों में शम्मी कपूर का अंदाज अपनी पुरानी फिल्मों से बिल्कुल अलग था, और इन फिल्मों में एक चुलबुले रोमांटिक हीरो की तरह नजर आए थे शम्मी कपूर, और उनके स्टाइल को लोगों ने इतना पसंद किया कि उसके बाद ये स्टाइल तो उनका स्टाइल ही बन गया। और उसके बाद तो उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया जिसके एक से बढ़कर एक गाने हैं। एक उनकी फिल्म आई थी जंगली जिसने इन्हें सुपरस्टार बना दिया, और इस जंगली फिल्म से जुड़ा हुआ एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा भी है जिसे मैं आपको जरूर सुनाऊंगी अब से बस थोड़ी देर में। लेकिन पहले जंगली का गीत सुनाती हूँ, वो भी बजेगा अब से बस थोड़ी ही देर में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि आज 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 124.05 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। और आपको बताते चलें कि 75 पाउंड का वाउचर एवरीडे आप जीत सकते हैं जब आप 1000 पाउंड से ज्यादा मनी ट्रांसफर करवाते हैं, या फिर अ गोल्ड कॉइन every week when sending over 2000 pounds. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: तो आपको बता दें कि आज नेदरलैंड्स और स्वीडन की टीम्स के बीच में फीफा वर्ल्ड कप का मैच होगा, और ग्रुप ई में जर्मनी और आइवरी कोस्ट की टीम्स खेलेंगी। लेकिन आपको ये भी याद दिला दें कि आप रैक लॉ सॉलिसिटर से 15 मिनट का फ्री कंसल्टेशन, फ्री एडवाइस ले सकते हैं जब आप मेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.

0: देखिए एक नई मोहब्बत की दास्तां, तुमसे तुम तक, हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: पंजाब दी बिगेस्ट ट्यून्स नॉन स्टॉप।

0: यस, जंगली फिल्म से था ये गाना जिसे आप में से बहुत सारे साथी सुनना चाहते थे। तो चलिए, ये गाना जिन्हें पसंद है मैंने ये उन सभी के नाम पर किया। लेकिन इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा जरूर सुनवाऊंगी कि जब इस फिल्म के सबसे एनर्जेटिक सबसे पॉपुलर गाने की शूटिंग हो रही थी, आपको याद ही होगा गाना याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे। यस, ये गाना कितना एनर्जेटिक है और इस गाने में जो गजब का डांस है, जो एनर्जी दिखती है, उसके पीछे कोई कोरियोग्राफर नहीं था। अक्सर ही शम्मी कपूर के जो गाने थे उनके लिए कभी कोई कोरियोग्राफर नहीं होता था, वो अपने गानों के स्टेप्स खुद ही डिजाइन करते थे। और ये गाने के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब इस गाने की शूटिंग श्रीनगर की बर्फीली वादियों में हो रही थी तो इस गाने को सुनकर और उन वादियों को देखकर शम्मी कपूर इतने जोश में आ गए कि उन्होंने बर्फ की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से नीचे की तरफ बार बार फिसलना शुरू कर दिया और वो पूरी तरह से जंगली हो गए थे, या कहूं इस गाने के मूड में डूब चुके थे। और बार बार ऊपर जाते फिर फिसल कर नीचे आते, बार बार ऊपर जाते फिर फिसल कर नीचे जाते, और वो इतनी जोर से बार बार ये काम कर रहे थे कि ऐसा करने से जब वो रीढ़ के बल फिसल रहे थे शूटिंग के दौरान, उन्हें मालूम पड़ा कि उनके घुटने की हड्डी खिसक गई है और पीठ में गंभीर चोट आई है। कमाल की बात यह है कि दर्द के बावजूद उन्होंने शॉट पूरा किया। और देखिए, गाना आज भी बॉलीवुड के इतिहास का सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कहूं या कहूं यादगार गाना तो गलत नहीं होगा, माना जाता है। और ये भी हम सब जानते हैं कि इस गाने में प्रयागराज ने पीछे से आवाज में गाया था याहू। लेकिन अब ये गाना तो मैं नहीं सुनवाने वाली हूँ क्योंकि इस फिल्म का एक गीत सुनवा चुकी हूँ। लेकिन एक और बहुत ही मजेदार सा गीत आने वाला है आप सबके लिए, और उस गीत को बजाने से पहले मैं आपको याद दिलाती चलूं कंपटीशन भी तो है। तैयार हैं? चलिए पहले बात कर लेते हैं आज के कंपटीशन।
1: Hey, this is Riz Khan and I'm taking you home on drive. Weekdays 4 till 7 p.m. at Leica Radio Greater Manchester.
0: तो शम्मी कपूर के गीतों को एंजॉय करते करते चलिए कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट कर लीजिए। लाइका रेडियो नेटवर्क आपके जेएस एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर आपको मौका देना जा रहे हैं दो टिकट जीतने का एक गुजराती कॉमेडी शो का, जिसका नाम है सखना रेजो हस्बैंड जी, जिसमें लीना शाह और समी शाह ने काम किया है। ये 26 जून फ्राइडे को होगा एट 27 पाटीदार समाज वैमली लंदन में। और आपको बता दें कि ये जो टिकट्स हैं ये लंदन शो के लिए ही हैं। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको हस्बैंड लिखना होगा और हस्बैंड के साथ साथ क्या लिखना होगा, अपना नाम लिख दीजिए, अपना टेलीफोन नंबर और अपना ईमेल आईडी भी लिख दीजिए, ठीक है। तो आपको जो भी प्रोग्राम के नेक्स्ट वाले आवर में बैक टू बैक गानों के बाद मैं विनर का नाम अनाउंस करूंगी और जो भी विनर होंगे वो इस शो को देखने के लिए जाएंगे और टिकट्स आपको कलेक्ट करने होंगे वेन्यू रिसेप्शन से जिस दिन शो है उसी दिन शाम को जाकर। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो फटाफट हस्बैंड लिख लिए, अपना नाम लिखिए, अपना टेलीफोन नंबर लिखिए और अपना ईमेल एड्रेस लिखकर हमें भेज दीजिए फटाफट।
2: WhatsApp Leica Radio Greater Manchester now on 07703 40 30 20. Feel Good Track was brought to you by LeicaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Leica Radio app and website on LeicaRadio.com. Listen live or listen back.
3: This is Leica Radio.
0: और आपको याद दिला दूं कि ये गुजराती प्ले है, तो अगर आप गुजराती बोलते या समझते हैं तभी जाइए तो फायदा है, नहीं तो मेरे जैसा कोई इंसान पहुंच गया तो फिर जोक समझ में नहीं आएंगे तो मजा नहीं है। इसलिए अगर आप गुजराती बोलते समझते हैं तभी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कीजिए।
2: दिस इज रितु शर्मा अक्रॉस ग्रेटर लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज रितु शर्मा

0: आशा जी और रफी साहब की आवाज में शम्मी कपूर की सुपरहिट फिल्म तुम सा नहीं देखा से था ये गाना। और तुम सा नहीं देखा शायद शम्मी कपूर साहब ने कहा होगा जब उन्होंने गीता बाली को देखा होगा। आप जानते ही हैं कि गीता बाली उनकी पत्नी थी और गीता बाली से बहुत प्यार कर बैठे थे शम्मी कपूर। शम्मी कपूर जब फिल्मों में आए थे तो उनकी शुरुआत की कुछ फिल्में सुपर फ्लॉप रही थी, लेकिन गीता बाली की फिल्में सुपरहिट थी और गीता बाली उस समय एक बड़ी स्टार भी बन चुकी थी। लेकिन शम्मी कपूर तो उन्हें दिल दे बैठे थे और उनके पीछे ही पड़ गए थे। और देखिए, इतनी बड़ी हीरोइन उस जमाने की टॉप स्टार थी गीता बाली, लेकिन शम्मी कपूर एक फ्लॉप एक्टर थे। फिर भी जब शम्मी कपूर ने उनसे शादी के लिए बात की तो गीता बाली ने उनसे हाँ कह दिया। बड़े ही गुपचुप तरीके से शादी हुई। शम्मी कपूर कितने खुश होंगे, लेकिन आप जानते हैं ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। बहुत ही छोटी सी उम्र में गीता बाली इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उनकी उम्र सिर्फ 35 साल की थी 35 ईयर्स की एज में जब उन्हें चिकन पॉक्स हुआ, और उस चिकन पॉक्स ने ही उनकी जान ले ली सिर्फ 35 ईयर्स की एज में। शम्मी कपूर साहब के दिल पर क्या बीती होगी कि जिसे उन्होंने इतना चाहा, लड़ झगड़ कर गुपचुप कर शादी रचाई उनका साथ बस इतने ही कम समय के लिए। लेकिन ऐसा हुआ और फिर शम्मी कपूर गीता बाली के गम में डूब गए। आज हम शम्मी कपूर साहब के ही जीवन से जुड़ी कुछ बातें, कुछ किस्से सुनवा रहे हैं। गीता बाली से उन्होंने बहुत प्रेम किया लेकिन ये साथ ज्यादा नहीं चला। एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत शम्मी कपूर की फिल्म से सुनवाने वाली हूँ अब से बस थोड़ी ही देर में। Like Extra Podcast Update। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लायका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का एक और नया एपिसोड ड्रॉप हो चुका है और इसे होस्ट किया है दीप राजा ने, और इस बार का टॉपिक है साउथ एशियन वुमेन इन स्पोर्ट्स। लायका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट को आप स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन पर जाकर सुन सकते हैं। लायका एक्स्ट्रा इज हियर।
1: गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर मैनचेस्टर एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
2: ये है
1: Leica Radio।
3: South of travel 7 days a week, South of travel 24 hours a day, we're at our peak।
4: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
5: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
6: Southall Travel, at all protected.
7: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk. And celebrate Father's Day in Ambala style.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just 711,000 pounds.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: Welcome to the jungle.
8: Film bilkul fake.
10: Hamari film army wali.
11: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
8: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
10: और स्टार कास्ट है
8: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
12: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
8: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून।
13: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
14: किस लिए फिल्म में
2: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
13: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटेटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
2: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटेटो चिप्स नाउ।
14: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
15: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
14: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
15: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
14: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस।
15: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
16: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
1: Asian sound for the northwest of England.
17: Like a
18: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758 580 1801 and let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology and humanity unite the world.
1: Did you know you can get all the biggest showbiz news stories daily by logging on to LaikaRadio.com or the Laika Radio mobile app, powered by BizAsiaLive.com.
19: This is Laika Radio.
1: This week's Laika Extra podcast episode, Deep Raja champions South Asian females in sports.
20: I didn't have any female role models. I'm a Liverpool fan, so Stephen Gerrard was my role model. So now being 26 and doing what I'm doing, I want to be that person that younger boys and girls look up to and think, if Simran can do it, I can do it.
1: Laika Extra is here. Search for our podcast, Laika Extra, on all major streaming platforms.
21: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Europe to faraway places, the same delicious Indian food. Wherever you go, that's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.
0: और जब गीता बाली शम्मी कपूर की दुनिया को छोड़कर गई होंगी, तो जरूर उनके दिल से यही आवाज निकली होगी।

0: आज शम्मी कपूर को यादें में याद किया और उन पर पिक्चराइज कुछ गाने आपने सुने। आपको बता दें कि उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और 3 बार फिल्म फेयर का अवार्ड जीता है फॉर द बेस्ट एक्टर। और बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो सुपर डुपर हिट हैं, लेकिन समय ही नहीं था उन्हें बजाने का। उम्मीद है आज की यादें आपको पसंद आई होंगी। मिलते हैं आपसे प्रोग्राम के अगले हिस्से में, और हाँ, विनर का नाम भी बताऊंगी।
1: Across Greater Manchester, this is Leica Radio, 963 AM, 1377 AM and DAB, a part of the Leica Radio Network.
2: Top stories this hour. The King says he's greatly saddened after a train driver was killed and dozens were injured in a collision between 2 rail services near Bedford. A train from Corby to London St Pancras crashed into the back of a Nottingham service, derailing at least 1 carriage. A spokesperson from Buckingham Palace says His Majesty's being kept regularly updated on developments. Dave Calf is the General Secretary of the Train Drivers Union, ASLEF.
3: It will affect every train driver, but it will also affect

0: जी आशा जी की आवाज में था ये गाना, प्यार में दिल पे मार दे गोली और संध्या भावसर के दिल पे सीधे गोली लग भी चुकी है, क्या बात है ठिशकियाओ। महान फिल्म से था ये गाना जिसमें किशोर दा और आशा जी की आवाज है, और उससे पहले आपने राजपूत फिल्म का गीत सुना जिसमें किशोर कुमार की आवाज थी। और लीजिए दो गीतों के साथ प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर शुरू हो गया है, और ये है लाइका रेडियो नेटवर्क जहां पर ऋतु शर्मा है आपके साथ, और आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। स्वागत है लास्ट एंड फाइनल आवर में आपका। पिछले आवर में यादें सुनी आपने शमी कपूर की और उन्हें बहुत इंजॉय किया, थैंक यू सो मच। और अब बारी है थ्री वर्ड्स गेम खेलने की और कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स सुनने की। लेकिन उससे पहले बताते चलूं कि प्रोग्राम के लास्ट आवर में एक कंपटीशन था जिसमें लाइका रेडियो नेटवर्क जैज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर आपको मौका दे रहे हैं जीतने का दो टिकट्स गुजराती स्टेज कॉमेडी जिसका नाम है सखना एजो हस्बैंड जी, और जिन्होंने इस कंपटीशन को जीता है उनका नाम है हरिवदन। हरिवदन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मिलते हैं इस कंपटीशन के दो टिकट। किसी खास के साथ देखकर आइए इस स्टेज शो को और मजे के साथ एंजॉय कीजिए, फिर हमें बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा। और कल भी एक कॉम्पिटिशन है, तो जिन्हें आज मौका नहीं मिला जीतने का वो निराश परेशान ना होइए, कल कोशिश कीजिए, हो सकता है कल आप बन जाए इस कॉम्पिटिशन के विनर, यू नेवर नो, ठीक है ना। चलिए फिर बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के हमारे थ्री वर्ड्स गेम वाले कॉम्पिटिशन की। कॉम्पिटिशन नहीं ऋतु, ये तो गेम है जिसे हम हर बार खेलते हैं। जी हाँ, तो चलिए बताती हूँ आपको आज के थ्री वर्ड्स गेम के थ्री वर्ड्स कौन से हैं। और ये थ्री वर्ड्स हमेशा है मैं किसी बॉलीवुड के किसी गाने से लेती हूँ और आपको पहचानना होता है कि गाना कौन सा है। तो आज का जो पहला वर्ड है उसका नाम उसका वो है प्यारे, दूसरा है दुनिया, तीसरा है दिल। 1971 में आई थी ये फिल्म, आर डी बर्मन का म्यूजिक है और लता जी की आवाज है। कौन सा है ये गाना? पहला वर्ड है प्यारे, दूसरा वर्ड है दुनिया और तीसरा वर्ड है दिल। 1971 की फिल्म, आर डी बर्मन का म्यूजिक, लता जी की आवाज। जरा बताइए तो सही कौन सा है ये गाना, अपने इस हमारे इस नंबर पर अपना मैसेज भिजवा कर।
1: WhatsApp Leica Radio Greater Manchester now on 07703403020।
0: एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, पहला वर्ड है प्यारे, दूसरा वर्ड है दुनिया, तीसरा वर्ड है दिल। 1971 की फिल्म, आर डी बर्मन का म्यूजिक और लता जी की आवाज। कौन सा है ये गाना?
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज वन पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 124.05 भारतीय रुपए। ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा SBI ब्रांच ऑनलाइन या फिर उनके योनो ऐप के थ्रू, और एंड ऑफ जून के बीच में आप 75 पाउंड्स का वाउचर जीत सकते हैं हर रोज जब आप ट्रांसफर करते हैं ओवर 1000 पाउंड्स एवरी डे, और या फिर 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app, or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Yeh hai Leica Radio.

0: जी हाँ बिल्कुल, लिखा है इन हवाओं पे, लिखा है इन घटाओं पे कि मैं हूँ तेरे लिए और तू है मेरे लिए। और ये कह रहे हैं शरफून और बलराज एक दूसरे से। शरफून जी, आपका मैसेज आया है और आपने बताया है कि आपके बिलव्ड हस्बैंड जी आज अपनी हैप्पी वाली बर्थडे मना रहे हैं, तो चलिए ये गाना आपकी ओर से बलराज जी को ही डेडिकेट करते हैं और पूरी फैमिली उन्हें बड़े ही प्यार से जन्मदिन की ढेरों बधाइयां दे रही है। तो बलराज जी, हमारी ओर से भी आपको हैप्पी बर्थडे, और आज सैटरडे का दिन है, परिवार के साथ धूमधाम से बर्थडे मनाइए। और डर का गीत जिसे लता जी और हरिहरन ने गाया था आपको डेडिकेट करते हैं। और आपको बता दें कि हरिहरन ही है हमारे इस बार के आर्टिस्ट ऑफ द वीक और उनका शो भी होने जा रहा है। अगर आपने टिकट्स अभी तक नहीं बुक कराई हैं तो जल्दी कीजिए। Like a radio. और आप शुरू करते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला। सुनवाते हैं आपको आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना जिसमें आवाज है मुकेश जी और साथ में है लता मंगेशकर।
1: This is Like a Radio.
2: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Like a Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
1: This is Like a Radio.
2: Greater Manchester.
1: Like a Radio.

0: कैसे हो।
1: प्रदीप कुमार और अनीता गुहा पर यह गीत पिक्चराइज किया गया था, जो हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना था। और आपको बता दें कि अनीता गुहा जो अपने जमाने की एक जानी मानी एक्टर रही हैं, जिन्होंने कई माइथोलॉजिकल फिल्मों में भी काम किया है, आज उनकी पुण्यतिथि है। 20 जून 2007 में जब उनकी 875 ईयर्स की थी, इस दुनिया को छोड़कर गईं। और इस फिल्म की हीरोइन जिसका नाम था संजोग, अनीता गुहा ही थी। और इस गीत को चलाकर हमने उन्हें आज याद किया।
2: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
3: This is Laika Radio.
1: तो चलिए, अब समय आ गया है आज के थ्री वर्ड्स गेम वाले गीत को किन किन साथियों ने पहचाना है उनके नाम बताने का। थैंक यू विजय गुडूरी जी, शो को पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपका आंसर बिल्कुल सही है। उसके अलावा उल्लास जी, शरफून, प्रीति बेल्जियम से, मनीषा शाह, नरेन पटेल, हाजरा जी, दिव्या जी हैरो से, रोशनी, करसन पिंडोरिया, तोची जी, किरण जी हैरो से, नीलेश तन्ना, आशुतोष चौबे, अर्जुन जी, रानी सोहानी, मोहम्मद अयूब चौहान, अर्जुन जी, कुकी, संध्या भावसर, गुरशरणजीत, निर्मला जी, अनुषा खोड़ा, आप सभी ने गीत को बिल्कुल सही पहचाना है। और उस गाने को मैं जरूर सुनाऊंगी, लेकिन पहले सुनवा दूं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना।
2: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma.
4: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: यश कारवां फिल्म से लिया था जो है हमारे आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना, जिसे ज्यादातर सभी साथियों ने बिल्कुल सही सही पहचाना।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, गुडनेस इन एवरी बाइट, ट्राई इट टुडे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
2: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 124 भारतीय रुपए, 368 पाकिस्तानी रुपए एंड 162 बांग्लादेशी टकास।
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: LEICA Radio.
2: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LEICA Radio.
0: So gold rate is 101.05 pounds per gram.
2: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
0: और लीजिए बस आज का मेरा और आपका साथ यहीं तक। अगला गीत लेकर चलेगा न्यूज तक और न्यूज के उस पार अनुराग होंगे लाइका गोल पर आपके साथ, फजीला होंगी लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर आपके साथ एंड नीरज होंगे लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर। लेकिन मैं आपसे कल फिर से मिलूंगी और अगर आप इस शो को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लिसन बैक पर जाकर इस शो को दोबारा सुन सकते हैं। कल मिलते हैं आपसे, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।
3: ये है लाइका रेडियो, ये है
4: LEICA Radio। Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल
6: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
7: यू मीन सॉफ्टॉल ट्रेवल?
6: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
7: एक बार आजमाइए जरूर सॉफ्टॉल ट्रेवल।
6: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
7: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
8: कॉल सॉफ्टॉल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161-250-1250. दैट्स 0161-250-1250.
9: वेलकम टू द जंगल।
10: फिल्म बिल्कुल फेक,
9: हमारी फिल्म आर्मी वाली
11: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
10: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
9: स्टार कास्ट है
10: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
9: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
10: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून।
9: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
12: किस लिए फिल्म में।
13: Don't miss Mono's Markets, Europe's largest arena. Co-op live on Saturday, the 1st of August. 200 brands, 10 shopping zones, a mega main stage, industry experts, speakers, nasheed artists, and charity partner Human Appeal. Early bird tickets sold out in just 3 days. First release only £15 and almost gone. Leica listeners get 10% off tickets and stalls with code LEICA10. WhatsApp 07482-511-603. Visit monosmarkets.com/tickets. Now.
14: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0-

0: नाम तो याद ही होगा ना, बट राइट नाउ टाइम टू प्ले बैक टू बैक म्यूजिक एंड बहुत सारी बातें. लाइक योर रेडियो,
1: लेट्स रिटर्न टू द बिगेस्ट हिट्स बैक टू बैक. दिस इज लाइक योर रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर, अ न्यू एशियन साउंड फॉर द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. 963 AM एंड 1377 AM. डाउनलोड द लाइक योर रेडियो मोबाइल ऐप एंड लिसन वेयरएवर यू आर इन द वर्ल्ड. लाइक योर. Sarita Sabawal.

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel, at all protected.
3: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June, in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented, and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa, or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk. And celebrate Father's Day in Ambala style.
4: Welcome to the jungle.
5: Film bilkul fake.
4: Hamari film army wali.
6: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
5: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
4: स्टार कास्ट है
5: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
7: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
5: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून.
8: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
9: मैं किस लिए फिल्म में?
10: अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा.
11: महाराजा टूर्स ला रहे हैं कैप्टिवेटिंग चाइना 2026. शंघाई, बीजिंग, शान और चेंगडू का अनफॉरगेटेबल सफर. ग्रेट वॉल, टेराकोटा वॉरियर्स, हाई स्पीड ट्रेन्स और एडोरेबल पैंडास. फ्लाइट्स, होटल्स, इंडियन खाना और गाइडेड टूर्स सब इंक्लूडेड. फ्रॉम 3,299 pounds पर पर्सन. विजिट maharajatours.co.uk या कॉल 07956154846.
12: Need a car the halal way? Look no further. Halal Car Finance is now available in the UK with Ayan. No interest, no hidden fees, no compromise. Apply today at ayan.co.uk. Ayan, drive with Baraka. Subject to status checks. Representative APR 10.9%. This rate reflects Ayan's rental charges. We do not charge interest.
13: Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Greater Manchester, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Leicester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0161 250 8222. That's 0161 250 8222. Or email sales@leicamedia.co.uk.
14: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां. मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से.
15: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
16: खुद से भी ज्यादा.
14: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में.
16: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है.
14: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT394.
17: You're both on the same road, same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes, because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
18: LEMFI means quicker and safe way to send money.
19: LEMFI means low transaction fees and great exchange rates.
18: LEMFI means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LIKA.
19: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LEMFI. Download the LEMFI mobile app today.
20: LEMFI is registered by the FCA. T's and C's apply.
13: We'd love to know what you think of your new Leica Radio Greater Manchester. Email us today with your feedback. info@leicaradio.com. That's info@leicaradio.com. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7 and with your favorite presenters live? Get the tune in details at leicagold.com.
21: This is Leica Radio
13: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
21: This is Leica Radio
13: Greater Manchester.
21: Leica Radio.

0: Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
0: This is Laika.
2: एंड येस ऑफ कोर्स एज आई मेंशन कभी मौसम जो है प्यार का पैगाम लेकर आता है, कभी यादों की बारिश और कभी कभी बस एक मुस्कुराहट की वजह बन जाता है. And I think that's the reason I picked up. I was inspired by this beautiful weather and I thought why not celebrate a word that has given us so many memorable Bollywood songs. और ये मौसम तो ऑसम है ही. And coming up next is a gana that's definitely going to turn and twist when it comes to Asha Bhosle. There has to be something magical about it, isn't it? तो चलिए देखते हैं कि आपको कितनी मेमोरीज जो है ये रिवाइव करेगा. और वैसे भी जब मौसम खूबसूरत होता है ना तो मूड भी खूबसूरत हो ही जाता है. एंड स्टे ट्यून, दिस इज शीना ऑन लाइक अ गोल्ड. एंड यस ऑफ कोर्स बनिए रहिए बिकॉज ऑब्वियसली हु नोज कि इन घंटों में कंपटीशन भी हो सकता है. यस ऑफ कोर्स इज गोना बी देयर अ चांस फॉर यू टू विन टू टिकट्स टू द गुजराती स्टेज कॉमेडी सखना रेजो हस्बैंड जी फीचरिंग अलीना शाह एंड समीर शाह. सो स्टे ट्यून्ड.
0: This is the Laika Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: The mausam that's going to define the definition of love is all about mausam mastana.

0: is Leica.
1: You're locked into Leica Gold with me, Sheena. और बहुत ही खूबसूरत से इन दो गानों के साथ we have just started in the second hour of the show. And as I always say, the show that's about entertainment, entertainment and more entertainment. और खूब सारा entertainment. और प्यार, मोहब्बत, इश्क. बस यही तीन लफ्ज रखिए, बाकी सबको यू एज वी ऑल से इन पंजाबी मिट्टी पाओ. एंड आई जस्ट हैव टू शेयर विद यू कि मैं कल कहाँ थी. यस, कल आई वॉज रियली एंजॉइंग बिकॉज देयर इज एन अपकमिंग मूवी कमिंग, कैरी ऑन जट्टा 4. सो ऑल द पंजाबीज आउट देयर, दे वुड डेफिनेटली नो अबाउट इट. नॉन पंजाबीज, यू नो, दे ऑल्सो नो अबाउट दिस मूवी. सो आई वॉज एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड आई मेट सरगुन मेहता एंड बीनू डिलन एंड गीपी गरेवाल वॉज नॉट वेल, तो वो नहीं आ पाए. पर आई एम टेलिंग यू, आई हैड द बेस्ट टाइम. बिकॉज वो कभी कभी ये होता है ना, यू जस्ट टेक योर ऑरा विद यू, यू जस्ट टेक योर पॉजिटिविटी विद यू, बाकी जाए यू नो मिट्टी पाए. एंड येस, दैट इज वॉट इट इज ऑल अबाउट. खूब लोग हम लोग हंसे बिकॉज दैट द मूवी इज ऑल्सो अबाउट दैट एंड इट्स रिलीजिंग ऑन 26th ऑफ जून. एंड फॉरगेट अबाउट दैट, जो सबसे अच्छी मेमोरी होती है ना, जब आप सबसे अच्छे तरीके मिलते हैं एंड यू गेट द सेम रिस्पॉन्स. पर कई बार ऐसा भी होता है कि फ्यू पीपल दे गिव यू वेरी नेगेटिव वाइब्स, या तो मतलब बेसिकली कोल्ड वाइब्स में कहूँ. आई एम श्योर आपकी जिंदगी में बड़े सारे ऐसे लोग होंगे कि यू आर ऑलवेज मीटिंग देम विद स्माइल एंड देन यू डू नॉट गेट दैट रिस्पॉन्स. यू नो इसका सिंपल आंसर क्या है, छड्डो परे सानू की, राइट? आई एम श्योर इन अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे. बट अगेन एंड देन आई एम गोना टॉक अबाउट द बुक दैट आई एम रीडिंग, लेट देम बी. सबका मतलब यही है, सानू की. एम आई राइट और एम आई राइट? दिस इज शीना.
0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: So £1 in British sterling can get you up to 124 rupees and 5 paisa. Send money to India via SBI Yono app or by branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day. Hanji, har roz when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when sending over £2,000. Do remember, terms and conditions do apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Hey, Leica Radio.
2: Leica Radio. Leica Radio.
0: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
1: And yes, it's all about the FIFA World Cup. और जो मैच है वो नेदरलैंड्स एंड स्वीडन के बीच में है. द मैच इज गोना स्टार्ट एट 6 PM एंड इट्स ग्रुप स्टेज ग्रुप एफ. सो यस, डेफिनेटली यू मस्ट वॉच इट एंड लेट मी नो कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं. एंड डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रक लॉ इफ यू मेंशन लाइका.
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Peter Summerwall with the biggest classics on Leica Radio.

0: What a beautiful track from the movie Qurbani, sponsored by Dairy Valley.
1: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
2: This is Laika Radio.
1: Laika Radio.
0: एंड यस, अब टाइम आ गया है कि आप लोगों को बेसिकली थोड़ा एंजॉयमेंट करना चाहिए. यस, लाइका रेडियो नेटवर्क टीम्स अप विद जेज एंटरटेनमेंट फॉर अ चांस फॉर यू टू विन टू टिकट्स टू द गुजराती स्टेज कॉमेडी सखना रेजो हस्बैंड जी फीचरिंग लीना शाह एंड समीर शाह. सो डेफिनेटली अगर आप ये चांस जो है विन करना चाहते हैं और अपनी पार्टनर के साथ जाना चाहते हैं, किसी के साथ भी जाना चाहें, एंड इट्स टेकिंग प्लेस ऑन फ्राइडे द 26th ऑफ जून एट 27 पाथीदार समाज वेम्बली लंदन. आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल है. सेंड द वर्ड हस्बैंड टू द सूट स्टूडियो व्हाट्सएप राइट नाउ. यस, यू जस्ट नीड टू सेंड द नंबर राइट नाउ 07424232323. और ये जो है बेसिकली 26 जून को होने वाला है. दीज टिकट्स आर वैलिड फॉर लंदन वेन्यू ओनली. विनर्स विल बी एबल टू कलेक्ट टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू रिसेप्शन ऑन द इवनिंग ऑफ द शो. टर्म्स एंड कंडीशन डू अप्लाई. सो सिर्फ आपको आपके हस्बैंड का कोई नाम नहीं लिखना है, कोई फोन नंबर नहीं देना. यू जस्ट नीड टू राइट द वर्ड हस्बैंड एंड हु नोज वेदर यू आर गोइंग विद योर हस्बैंड और समवन एल्स.
1: Sarita Sabharwal with the biggest classics on Laika Radio.

0: लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो डॉट कॉम ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी दिस इज लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at LeicaRadio.com and the Leica Radio mobile app.
1: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Italy to Paris, Japan to USA. Star Tours takes you where you want to go. That's the Star Tours experience. Visit StarTours.co.uk.
2: Let us bring the retro vibe on. Adi Baman on the vocals. With the music. Aur Mehbooba, Mehbooba. Shole. Aur kya chahiye?

0: एंड यस, मैंने तो आपको कहा था मिर्ची खा के आई है या सोच के आई है. एंड या आई जस्ट वांटेड टू चेक, समटाइम इट इज गुड टू चेक लोगों का फोकस कैसा है, कितने अटेंटिव है. इट्स लाइक क्लास गोइंग ऑन, चीना की क्लास. एंड आई कैन सी दैट काफी लोगों ने मुझे ही मिर्ची भेज दी है और काफी लोगों ने बोला हाँ हमें मिर्ची पसंद है. सो डेफिनेटली आप सुन रहे हैं, कभी कभी ये भी जानना जरूरी है. यस yes, कभी कभी थोड़ा बहुत फन कर लेना चाहिए. बट आई सी लॉट ऑफ पीपल यू नो आर रिक्वेस्टिंग कि कुछ और, मतलब इतने प्यारे गाने आप बजा रहे हैं तो कुछ डिफरेंट भी चाहिए. तो डिफरेंट आएगा आएगा, वेट करिए. लाइफ में इतनी आसानी से चीजें नहीं मिलती हैं. एंड इस सेक्शन की खास बात यह है, वी गोना रिवाइव द ओल्ड मेमोरीज, कि जैसे कि कोई एक मूवी थी जो इसी दिन आई थी एंड बिकेम अ सुपर डुपर हिट. चाहे सुपर डुपर हिट हुई यू नो, लेकिन आर्टिस्ट ने अपनी पूरी जान लगाई थी. पर जो मूवी आज आई थी उनके तो आर्टिस्ट की भी क्या बात करें, प्रोड्यूसर डायरेक्टर की क्या बात करें. यू नो इट वॉज ऑल अ सुपर डुपर हिट. और आज ही के दिन 20th of June को बहुत ही खूबसूरत सी मूवी रिलीज हुई थी जो थी जाबाज. क्या इस मूवी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो. बट या ऑफ कोर्स वी गोना टॉक अबाउट इट, बिकॉज इसके मैं दो गाने आपको दूंगी एंड मेजॉरिटी विल विन. या तो हम बेसिकली प्ले कर सकते हैं तेरा साथ है कितना प्यारा, और एल्स आई कैन ऑल्सो थिंक अबाउट प्लेइंग प्यार दो प्यार लो. आई लेट यू डिसाइड. आज आप लोगों की चलेगी, जिसकी वोटिंग सबसे ज्यादा होगी हम वही गाना प्ले करेंगे. सो फटाफट भेजिए मैसेज मुझे. एंड जाबाज बेसिकली दरिया दिल कह दूं, 1986 में आई थी ये मूवी. एंड वी ऑल नो अबाउट अनिल कपूर, डिंपल कपाड़िया, ऊ ला ला, एंड प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड बाय वन एंड ओनली फिरोज खान. और इसमें श्रीदेवी का भी बहुत खूबसूरत सा गाना था, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में. ये तो वैसे सच्ची है, इसमें कोई शक नहीं है. मिल जाए तो उसको संभाल के रखिए, बस इतनी ही एडवाइस है. दिस इज शीना ऑन लाइक अ गर्ल.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 124.01 Indian rupees. And send money to India via SBI Yono app or branch before end of June. And be in a win to win £75 voucher har roz, every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Yeah.
1: Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: And yes, talking about the FIFA World Cup 2026 today, it's about Netherlands versus Sweden. And yes, the score is 1-0. Quite interesting one, isn't it? Goal ho bhi gaya, yes. Goal Brian Robbery gives the Netherlands a 1-0 lead. So we'll keep you posted about the scores.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Summerwall with the biggest classics on Leica Radio.
3: Surrenderella is back for 2026. Beck Theatre Hayes, 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre World Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed dizzy panto fun for all the family. And with tickets starting from £15, click riffgotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surrenderella goes back into the Bollywoods. Radio partner Leica Radio.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410। साफो ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
6: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
6: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
7: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
8: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
7: Jaimin Foods Mango Pulp, available now.
9: Need a car the halal way? Look no further. Halal Car Finance is now available in the UK with Ayan. No interest, no hidden fees, no compromise. Apply today at ayan.co.uk. Ayan, drive with Baraka.
10: Subject to status checks. Representative APR 10.9%. This rate reflects Ayan's rental charges. We do not charge interest.
11: Want magic in every bite? Grab Hira Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hira Foods, king in quality, king in taste.
1: Bradford Mellor, 1st and 2nd of August. Exclusive radio partner, Leica Radio.
12: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
1: Yeah, like a gold.

0: चप्पा चप्पा चरखा चले फ्रॉम द मूवी मार्चेस एंड द आर्टिस्ट ऑफ द वीक इज नन अदर देन हरिहरन एंड दिस सॉन्ग इज एन अमलगमेशन जिसमें हरिहरन और सुरेश वाडेकर का कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है एंड सो इज द गाना. बेसिकली इस गाने में एक रूह है जो आप ढूंढते हैं कि चुन्नी लेके सोती थी कमाल लगती थी. सो बेसिकली इट इज ऑल टॉकिंग अबाउट कि जब आप घर से बाहर होते हैं एंड हाउ यू मिस योर फैमिली, यू मिस योर पार्टनर, यू मिस योर मॉम, एंड यही गाने को ऐसे दर्शाएगा. और हरिहरन के कितने सारे गाने हैं, मतलब जितने भी प्ले करे जाए, यू नो दिस इज नेवर एंडिंग लिस्ट. सो दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट टू बिकॉज इट्स अ वेरी मीनिंगफुल एंड डीप गाना. एंड कमिंग अप नेक्स्ट इज द गाना स्पॉन्सर्ड बाय डेरी ली, बट दिस इज द गाना यू गाइस पिक्ड. हाँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, आपने जाबाज का ये गाना पिक किया. सो लेट्स प्ले, लेट्स सी किसने मेजॉरिटी के साथ क्या गाना आप लोगों ने चूज किया है.
1: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
2: This is Leica Radio.
1: Greater Manchester.
2: Leica Radio.

देखिए एक नई मोहब्बत की दास्तां, तुमसे तुम तक, हर रोज रात 8 बजे आपके अपने ZTV HD पर।

0: Leica Radio. Leica Radio. Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
1: So at the moment, it's Netherlands versus Sweden. It's going live. 47th minute is on, and Netherlands, they're ahead with 3 goals. And Sweden, unfortunately, it's 0 for them. Let's see how it goes. And the next match starts at 9 p.m. Germany versus Ivory Coast. And don't forget, you can get your 15-minute free legal advice with our sponsors, Rock Law, if you mention Leica.
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Leica Radio.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410 दैट्स 8574 8410 साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
3: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate. Father's Day in Ambala style.
4: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है क्योंकि वो नया होता है.
5: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
6: दोस्ती की कोई value नहीं है ना तुझे, उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है.
5: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2, now in cinemas.
7: दुल्हन के लिए makeup.
5: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
8: Surinderella is back for 2026. Beck Theatre Hayes, 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre Royal Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surinderella is guaranteed dizzy panto fun for all the family. And with tickets starting from £15, click riffgotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surinderella goes back into the Bollywoods. Radio partner Leica Radio.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 0208890880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
10: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
11: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
10: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
11: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
10: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
11: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
12: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
7: अपने कारोबार को अक्रॉस ग्रेटर मैनचेस्टर पहुंचाना चाहते हैं, तो इसे लाइक रेडियो मैनचेस्टर पर जो साउथ एशियन कम्युनिटी के सीने में दिल बन के धड़कता है एडवर्टाइज करके सैकड़ों लिसनर्स तक रोजाना पहुंचाइए। लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर, ईमेल sales@likeamedia.co.uk और कॉल नंबर इज 01612508222, दैट इज 01612508222। लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर, आपकी कम्युनिटी आपका स्टेशन।
13: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Italy to Paris, Japan to USA, Star Tours takes you where you want to go. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.
1: You know what the best feeling is? When aap apne apno ke liye kuch kar sakte ho. And the best thing for me as a radio presenter is if I can dedicate a song to my loved ones, to my friends, to my family, and all kya. Itne dur se mujhe ek message aaya hai ki ek gana mere liye ho jaye from the movie Tum Bin. So Poonam Preet, she's a TV actor, she's an amazing person, and she's a dear friend. So this song coming up is for her.

आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे

0: Anchor with Mike Drop on Leica Radio. Leica Radio.
1: देखो मुंबई नगरिया से मैं आया हूँ और अपने जगह पर आया हूँ. आई थिंक आई एम हियर एट द राइट प्लेस विद द राइट पीपल विद यू विद ऑल द लव एंड बस इसीलिए ऐसे गाने मैं प्ले कर देता हूँ. एंड देखो धमाल मूवी कितनी सारी आई है. धमाल 1, धमाल 2, टोटल धमाल, धमाल 3, ट्रिपल धमाल एंड ये धमाल 4 आने वाली है. और इसका एक गाना गुरु रंधावा, ओ माय गॉड, अमेजिंग ट्रैक. कुछ ही देर में मैं प्ले जरूर करूंगा, बट उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, मैं पूछना चाहूंगा, हैव यू ट्राइड एनी काइंड ऑफ वियर्ड डिशेस? जैसे कोई होता है जो केचप के साथ चिकन खाता है, आई थिंक इट्स वेरी वियर्ड फॉर मी. एंड ब्रेड्स के साथ कोई ये क्या कहते हैं, जूस खाता है, जूस में डिप करके कोई ब्रेड खा रहा है. सो ऐसा कोई वियर्ड डिश आपने ट्राई किया हो या आपके आसपास किसी ने ट्राई किया हो, फील फ्री टू टेल मी ऑन 07703403020. बताना जरूर.
2: Drop with Anchor. This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: with Anchor. Like a radio.
1: Okay, शरारत तो होगी, अगर हम हैं तो मोहब्बत भी होगी, शरारत भी होगी. मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा था और बहुत ही जबरदस्त आंसर्स आए हैं कि व्हाट्स द वियर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ फूड हैव यू ट्राइड. मुझे आया है हलवा, हलवा एंड ब्रेड, टोस्ट करके हलवा एंड ब्रेड खा. I would, I used to have it with peanut butter like my toast, but now I'll try it with halwa as well. मैंने ये बातें इसीलिए छेड़ी थी क्योंकि आज है National Ice Cream Soda Day. कि ice cream and soda का combination जो है, for me it was quite weird on an early stage, but now I enjoy that as well. और भी अगर कुछ ऐसे weird dishes हैं ना आपके ज़हन में, तो बताओ. और एक शख्स है इरफान सर, उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने आंसर दिया है. एंड एक काम करते हैं, उनकी वाइफ एंड उनके लिए कुछ ही देर में एक गाना प्ले करेंगे. ये आसिम अजहर की आवाज में पाकिस्तानी हिट ऑफ द आवर जो है, ये भी इनके नाम ही करते हैं.
0: एंकर विद माइक ड्रॉप ऑन लाइका रेडियो. द पाकिस्तानी हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप. लिसन लाइव एंड लिसन बैक टू योर फेवरेट शोज.

0: Mic Drop on Leica Radio. Leica Radio.
1: I'm sure ऐसे गाने आपको और भी जगह सुनेंगे, but ये आवाज जो मेरी है, ऐसा अंदाज आपको और कहीं नहीं मिलेगा. It's only on Leica Radio, Greater Manchester. देखो, अपनी तारीफ खुद कर लेनी चाहिए. Two things, भूख लगे खाना खा लो, तारीफ के काबिल लगे तारीफ कर लो. अगर ये दोनों चीज के लिए किसी का इंतजार करोगे आप, तो इंतजार में ही रह जाओगे. वाह वाह, देखो ऐसी अच्छी अच्छी बातें, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये वाली सारी जो फीलिंग है वो मेरी बातों से आपको मिलेगी. पर एट द सेम टाइम जो गाने आएंगे वो आपको थिरकने पे मजबूर कर देंगे. मेरा जादू ही कुछ ऐसा है, यकीन नहीं होता. अरे गाना सुन के देखो जी.
0: With Anchor, cool music for a super hot summertime on the Leica Radio Network.
1: अपना जादू ही कुछ ऐसा है जो चारों ओर है. Trust me,

0: with Mike Drop on Leica Radio. Leica Radio.
1: देखो सच तो मैं सच कहता हूँ और उसके सिवा मैं कुछ नहीं कहता. नाम है मेरा अंकुर एंड इफ यू डोंट फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया दैट्स अ बिग लॉस ट्रस्ट मी. एंड एट द सेम टाइम लाइक आवर रेडियो क्रिएटर मैनचेस्टर को आपको फॉलो करना चाहिए ऑन इंस्टाग्राम एज वेल बिकॉज वी आर सो एंटरटेनिंग. ऑल द प्रेजेंटर्स अपने वीडियोज उनके आते रहते हैं. कॉन्टेंट किसी का गानों के इर्द गिर्द होता है, किसी का एंटरटेनमेंट का होता है एंड ऑल द अपडेट्स अबाउट मीडिया एंड मूवीज एंड और भी दुनिया की तमाम चीजें आपको सब मिलेगी वहां पर. बस आपको छोटी सी चीजें करनी है. इंस्टाग्राम पे जाकर आप लाइक आवर रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर पे जाके फॉलो का बटन दबाइए एंड ट्रस्ट मी वहां पर मैं दिख जाऊंगा आपको और फिर आप बोलोगे हाय ये तो कितना क्यूट है. All our presenters are sweet, cute and adorable. Trust me, you're gonna love our page. And ये तो हो गई बात प्रमोशन की. देखो प्रमोट करना चाहिए अपनी चीजें. अगर हम प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा. बाकी दिस सॉन्ग पर्सनली इज क्लोज टू माई हार्ट. नया गाना एंड इस गाने ने इस मूवी ने एक अलग इंडिया पाकिस्तान की लव स्टोरी का एंगल दिखाया एंड इट इज सो ब्यूटिफुल. मैं वापस आऊंगा फ्रॉम द मूवी यस मैं वापस आऊंगा डायरेक्टेड बाय इम्तियाज अली. तो एक काम करते हैं गाना सुन के देखते हैं.
0: The Mic Drop with Ank.
2: Hey, this is Riz Khan and I'm taking you home on drive. Weekdays 4 till 7 p.m. at Leica Radio Greater Manchester.

0: with Mike Drop on Leica Radio. Leica Radio.
1: मुझे प्यार कुछ वक्त पहले हुआ था एंड जब से प्यार हुआ है तब से मैं इसका साथ नहीं छोड़ रहा एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द माइक जिस पे मैं बातें कर रहा हूँ. यस आई लव माय स्टूडियो. इट गिव्स मी अ गुड फीलिंग, इट गिव्स मी अ ब्यूटीफुल फीलिंग एंड एट द सेम टाइम आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने हाथों में कि आप प्यार मोहब्बत स्प्रेड करो एंड अच्छे. जब हम अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं ना कहीं कहते हैं ना जब कोई 100 पत्थर मारता तो एक लगता है, तो वैसे ही ये शब्दों का बांध जो निकलते हैं ये जब निकलते हैं उसमें से एक जो दिल पे बात लग जाए वो कमाल कर देती है और चेहरे पे मुस्कान ले आती है. सो दैट्स माय जॉब एंड आई बिलीव दिस इज माय पर्पस ऑफ लाइफ दैट आई वांट टू मेक एवरीवन हैप्पी एंड आई वांट टू कीप दैट लव एंड पॉजिटिविटी एंड गुडनेस अलाइव. देखो अच्छी अच्छी बातें तो करता रहूंगा बट टाइम फॉर सम पाकिस्तानी हिट ऑफ द आवर. और उससे पहले देखो मुझे आप सबने तो मिस किया बट मेरे कॉलीग्स भी मुझे मिस करते हैं एंड अब मुझसे मुलाकात करके गए नासिर. मिस्टर नासिर इज अ स्वीट चैम्प एंड अ स्वीट गाय. आज तो हम दोनों ट्विनिंग कर रहे थे वैसे एंड दोनों मतलब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं ऐसा लग रहा है क्या बात है और दोनों एक दूसरे के तारीफों के पुल बांध रहे हैं. मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं सच्ची तारीफ कर रहा था, वैसे तो वो भी सच्ची कर रहे होंगे. Enjoy this beautiful track and I need to give shout out to someone else as well but main ek kaam karunga jab pehle main Diljit ka gana nikal lu aur fir main shout out do hai na wo baat to sahi hogi.
0: With Anchor, the Pakistani hit of the hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.

0: with Mike Drop on Leica Radio. Leica Radio.
1: एक इस गाने में एक बात बहुत सही कही है, मुंडा सोना हूँ मैं तो सोना हूँ, ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं अपनी तारीफ भी खुद कर लेता और अच्छे से करता हूँ। आई एम रियली एडोरेबल एंड आई, पता है कभी कभार मैं ऊपर वाले को देख के कहता हूँ थैंक यू तुमने मुझे बनाया, क्योंकि अगर मुझे नहीं बनाया होता तो इस दुनिया का क्या होता। इतना सेल्फ ऑब्सेशन होना चाहिए, अपने आप से मोहब्बत होनी चाहिए, अपने आप को खुश रखना आना चाहिए। कोई नहीं आएगा बॉस, ट्रस्ट मी, लाइफ में आज कोई कुछ और कह रहा है, कल को कुछ और कहेगा, एंड देन बाद में मैनिपुलेट करके बाद में तुम पर ही बात डाल देगा, ऐसा हो सकता है। सो ये अंकुर इज बैक, यस आई एम बैक, मुझे मैसेज आया है कि आर यू बैक, आई एम बैक ऑफ कोर्स विद अ बैंग एंड विद अमेजिंग म्यूजिक। और बाकी आप सब लोग को भी मेरा सॉन्ग का म्यूजिक का फ्लेवर, जो मेरे शो का फ्लेवर है, वो पसंद आ रहा है तो फील फ्री टू मैसेज मी ऑन 07703403020, यस दैट्स माय नंबर। एंड जैसा वादा किया था दिलजीत दोसांझ का मैंने गाना प्ले करा, बट मैं सोच रहा हूँ एक और गाना प्ले कर ही देते हैं। हाँ, यस दिस सॉन्ग इज फॉर सतवीर कौर, एंड सतवीर कौर आई होप यू लव दिस ट्रैक बिकॉज आई पर्सनली लव दिस ट्रैक।
0: द माइक ड्रॉप विद एंकर।
1: दिस म्यूजिक हिट्स यू डिफरेंटली एंड सतवीर थोड़ा सा तो बड़ी वाली स्माइल, थोड़ी सी स्माइल, चलो एक काम करो एंड थोड़ा सा डांस तो बनता है इस गाने पे।

0: Mica Radio Network, broadcasting across Greater Manchester. Anchor with Mike Drop on Leica Radio. Leica Radio.
1: दिलजीत के गाने दिल तक लगते हैं, उनकी आवाज, उनका पर्सोना, उनकी पर्सनालिटी, उनकी एक्टिंग जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. कपल ऑफ इयर्स बैक शाहरुख खान सेड दिस टू इम्तियाज अली दैट इफ यू वांट टू सी अ फाइनेस्ट एक्टर इन इंडिया और अराउंड द वर्ल्ड इट शुड बी दिलजीत दोसांझ. तब तक वो बॉलीवुड में इतने फेमस नहीं हुए थे. एंड बोलते ना हीरे की परख जौहर को ही होती है, बट ये हीरा हीरा को ही हीरा बोल रहा था. क्या बात है. तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं एंड सॉफ्ट आते हैं दिस आवर का लास्ट ट्रैक विद तेरे मेरे दरमियाँ.

0: Mic Drop on Leica Radio. Leica Radio.
1: से दिल लगा कर देखो, दिल देकर देखो. Your dil is pretty safe with me. And yes, let's get into the zone of history. You know, आज के दिन क्या हुआ था in 1837. हम में से कोई भी उस वक्त वाला है नहीं हमारे बीच, unfortunately. But I somehow think कि ऐसा कुछ technology आ जाए कि मतलब लोग 200, 300 साल जी पाए. इट्स गोना बी नाइस, राइट? ऐसा कुछ हो तो विच इज़ गोना बी रियली नाइस एंड गेम चेंजिंग होगा. पूरा एक सिस्टम ही बदल जाएगा, आई वुड से पावर का जो सिस्टम है वो भी बदल जाएगा. येस, कमिंग बैक टू द पॉइंट, विक्टोरिया बिकम्स क्वीन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम टुडे इन 1837. एंड यू नो ड्यूरिंग द 64 ईयर्स ऑफ हर रीजेंसी द यूनाइटेड किंगडम became one of the world's most potent power. The British Empire soon encompassed large parts of the planet. Queen Victoria died in 1901, but she made sure that her presence can be felt till now as well. I think she was one of the best, and she has done really good things around the world. So yeah, that's the history. And now coming back to the songs, which is a new track. I think ये revamp version songs को जो remake version होता है ना, वो इस तरीके से होना चाहिए. And picturization भी इस तरीके से होना चाहिए कि पता चले कि OG ही OG है. And they didn't play with it much. जो OG था वही present proper तरीके से किया. So here we go. Bandhu song from Cocktail 2.
0: The Mic Drop with Anchor.
2: मैं हूँ इब्ने ताबिश और मेरा आपका साथ रहता है रोजाना मिड मॉर्निंग शो में लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर से सुबह 10 बजे से

0: Mic drop on Leica Radio. Leica Radio.
1: कभार मैं ये सोचता हूँ मैं आज क्या खा के आया हूँ कि बैक टू बैक ऐसे बेहतरीन वाले गाने मैं कैसे सोच सकता हूँ. एंड बड़ी ऐप गाने की मैं सात समंदर पार से आया हूँ घूम कर रिलैक्स मोड पर आकर. बट यू नो व्हाट इज मोर रिलैक्सिंग फॉर मी, वर्किंग इज मोर रिलैक्सिंग फॉर मी बिकॉज आई लव टू बी प्रोडक्टिव, आई लव टू बी बिजी. एंड यू नो व्हाट, आज नेशनल डे जो वर्ल्ड नेशनल डे जो होते हैं अलग अलग नेशनल डेज वर्ल्ड डेज स्पेसिफिक, आज वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी डे भी है. सो आप अगर आप थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी दिखा सको कोई काम में या फिर कुछ भी इन जनरल एस्पेक्ट इन रिलेशनशिप और एट वर्क प्लेस, लाइफ इज सो गुड एंड पीसफुल. ट्रस्ट मी, इट गिव्स अ डिफरेंट किक. आई लव वर्किंग एंड स्पेशली फॉर रेडियो. पता है मुझे एक चीज सिंपल सी बात कहनी है विच इज़ वेरी आई थिंक सिंपल बट कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकती है, ये कि मुझे ना ब्रेकअप से ज़्यादा अगर कोई चीज़ हर्ट कर सकती है वो मेरी रेडियो और मेरी दूरी. आई है मेरे माइक और मेरी दूरी. मेरा बस चले तो मैं रोज़ आऊँ आप सबसे, इतना प्यार बटोरूँ, इतना प्यार बटोरूँ. एंड बस हो गया यार, ऐसे इतना प्यार प्यार करके मतलब मैं आपको एकदम ब्लश करवा दूँगा आज मुझे लगता है. चलो एक काम करते हैं, ये बेहतरीन वाला गाना आप ही के नाम करते हैं. एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक एंड उसके बाद मैं मिलूंगा कुछ ही देर में.
0: द माइक ड्रॉप विद एंकर, द पाकिस्तानी हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप. लिसन लाइव एंड लिसन बैक टू योर फेवरेट शोज.
1: Love this beautiful track sung by Atif Aslam. I think हर एक बंदा आतिफ असलम का फैन है दुनिया में, कहीं से भी हो आप आतिफ के फैन तो होंगे ही.

0: with Mike Drop on Leica Radio. Leica Radio.
1: मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं इमरान खान के गाने भी बहुत प्ले करता हूँ. इमरान खान इज अ पंजाबी सिंगर एंड दिस इज व्हाट यू हर्ड. इनके गाने अर्ली 2000 में ही वाज अ वायरल सेंसेशन. ट्रस्ट मी हनी सिंह एंड एवरीवन दे वर लाइक माय गॉड इमरान खान को साइन करना है. सो या दैट वाज द सीन. नाउ मेरा जाने का टाइम हो गया. बट जाते जाते आप सबको शुक्रिया कहना चाहूंगा. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड आई होप यू एंजॉय द show. I'll be seeing you guys same time same show on Saturdays. Mic drop lekar aa jata hu full on power ke saath and full on vibe ke saath. So yeah, just make sure that you keep a big smile throughout by the way kal Father's Day hai, so wish karna apne fathers ko and make him feel special and nice and give him a big hug and meri taraf se happy Father's Day to you and your fathers. And jaate jaate sirf ek baat kehna chahunga. Dekho, har field ka apna ek dawn hota hai. Radio ka dawn kaun hai? Aapko to pata hi hai ji. Take care. See you guys next Saturday.
0: The Mic Drop with Anchor. The Northwest with Leica Radio Greater Manchester. And the South with Leica Radio Greater London. We are your Leica Radio Network.

0: ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ, ਲਾਈਕਾ radio.com ਤੇ ਅਲੈਕਸਾ ਪਲੇ ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ।
1: You know, I fan shout at football matches. That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
2: We'd love to know what you think of your new Leica Radio Greater Manchester. Email us today with your feedback. info@leicaradio.com. That's info@leicaradio.com.
3: CTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
4: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं?
5: खुद से भी ज्यादा।
3: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
6: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
3: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे CTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT394.
2: Get in touch. Advertise on Leica Radio Greater Manchester, the largest Asian commercial radio station in the northwest of England. Call now 0161 250 8222 or sales@leicaradio.com. Advertise today on Leica Radio Greater Manchester. Call 0161 250 8222. The biggest Asian love songs across Manchester. The Love Sound. Leica Radio.

0: है लाइका रेडियो। सीटीवी एंड C5 प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम, प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एस रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9-12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम।
1: बुक योर टिकट्स नाउ ऑन eventimapollo.co.uk एंड यूज कोड हमारे राम 10 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल शोज एंड टिकट।
0: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल at all protected.
3: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
4: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
5: This is Leica Radio, Greater Manchester. The biggest Asian love songs across the Northwest. The Love Sound, Leica Radio.